0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
1: लस है मेबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिम प्रे रखोरमा नगा फारममा असिम टमाटर की ट्रनेलमा सिंगबे सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबे सुर मुसम ओम टंके सुर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो होई रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ध्वनिला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी संपर्क नंबर चाहिँ 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिंजिम सेगो है रोमा